0: सुध्यन्ता ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूया सग्गस्वाः
1: तिष्ठ पुरुष हरित पिंगल लोहिताक्षि देहि देहि।